श्रोताओं, ललिता घोष के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ चर्चा करते हैं इंजन व ट्रैक्टर के रखरखाव के संदर्भ में। प्रत्येक ट्रैक्टर या इंजन निर्माता कंपनी द्वारा नई मशीन के साथ निर्देश पुस्तिका अवश्य प्रदान की जाती है। इस पुस्तिका में दी गई विधि के अनुसार मशीन के प्रयोग करने और उसकी देखभाल से कम खर्च में अधिक समय तक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। अतः ट्रैक्टर या इंजन का प्रयोग करने से पहले उसके साथ दी गई निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें और उसमें दी गई सलाह के अनुसार ही मशीन का प्रयोग करें। यदि टंकी और नली के बीच किसी भी जोड़ से प्रति सेकंड एक बूंद तेल टपकता है तो हर महीने करीब 50 लीटर तेल व्यर्थ बह जाएगा। अतः कभी भी तेल को बेकार ना टपकने दें। सभी जोड़ों को कस कर रखें और फिर भी तेल टपके तो उनके पैकेजिंग वॉशर नए लगाकर पुनः कसें। इससे तेल का रिसाव अवश्य बंद हो जाएगा। इंजन चालू करने पर यदि इंजन से टैपिट की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि इंजन में हवा की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम जा रही है। इसके कारण डीजल की खपत बढ़ जाएगी। टैपिट से आवाज़ आने पर इंजन को पुनः सुधार कर डीजल की खपत को कम करें। इंजन से काला धुआं निकलने का अर्थ है कि ज़रूरत से ज़्यादा डीजल खर्च हो रहा है। इंजेक्टर या इंजेक्शन पंप में कोई खराबी इसका कारण हो सकती है। अतः छोटे इंजन में 150 घंटे प्रयोग के बाद और ट्रैक्टर में 600 घंटे प्रयोग के बाद इंजेक्टर की जांच करवाकर उसे फिर से बंधवाएं। यदि इंजन अभी भी काला धुआं देता है तो इसके इंजेक्शन पंप की जांच जरूरी है। इंजेक्टर और इंजेक्शन पंप के सही बंधे होने पर इंजन लगातार काला धुआं नहीं देगा और डीजल कम खर्च होगा। ठंडे इंजन से काम लेने पर उसके पुर्जों की घिसावट ज्यादा होती है और डीजल भी अधिक खर्च होता है। अतः इंजन चालू करने के बाद तुरंत ही उससे काम लेना शुरू ना करें। जब इंजन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उससे काम लेने पर पुर्जों की घिसावट सबसे कम होती है तथा डीजल का खर्च भी कम होता है। काम करते समय इंजन की गति यदि बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ती तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर चलने वाले पिस्टन रिंग आदि घिस गए हैं। इन पुर्जों के घिसने पर भी इंजन ज़्यादा तेल खर्च करने लगता है। ऐसी स्थिति आने पर आवश्यक मरम्मत कराने से तेल के खर्च में बचत की जा सकती है। बिना काम इंजन चालू रखने से प्रति घंटा कम से कम 1 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। इंजन में लगे सेल्फ स्टार्टर, बैटरी इत्यादि को अच्छी हालत में रखें, जिससे इंजन को ज़रूरत पड़ने पर आसानी से चालू किया जा सके। हवा के साथ धूल इंजन में जाकर अंदर के पुर्जों को घिस देती है, इससे ज़्यादा तेल खर्च होने लगता है। इसलिए बिल्कुल साफ हवा ही इंजन में जानी चाहिए। इसके लिए एयर फिल्टर को नियमित रूप से साफ करें। इंजन में लगे डीजल फिल्टर गंदे हो जाने पर इंजन के चलने में बाधा पड़ती है। इस रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया में डीजल व्यर्थ जाता है। अतः निश्चित समय पर इन फिल्टरों को अवश्य बदलें। यदि आपके इंजन में 2 फिल्टर लगे हैं तो इन्हें कभी भी एक साथ ना बदलें, बल्कि आगे पीछे और नियत घंटों के इस्तेमाल के बाद ही बदलें। काम के बोझ को देखते हुए ट्रैक्टर के सही गियर का चुनाव करें। सही गियर के साथ 3/4 एक्सीलेटर के प्रयोग से ट्रैक्टर इंजन धुआं नहीं देगा। यदि धुआं निकल रहा है तो ट्रैक्टर में निचला गियर प्रयोग कर डीजल को बचाएं। घिसे टायर काम में लेने पर फिसलने लगते हैं और डीजल का खर्च बढ़ता है। टायर घिस जाने पर उन्हें जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर के पहियों में हवा कम होने से डीजल की खपत बढ़ती है, इसलिए निर्देश पुस्तिका में दिए गए सुझाव के अनुसार ही पहियों में हवा का सही दबाव बनाए रखें। अधिकांश ट्रैक्टरों के अगले पहियों में 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और पिछले पहियों में 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हवा का दबाव रखा जाता है। खेत में बिना काम खाली ट्रैक्टर घुमाने से डीजल का खर्च बढ़ता है। अतः ट्रैक्टर को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे किनारों पर घूमने में कम समय लगे और खेत में अधिक समय कार्य हो सके।

0: के, जैसे कि चौड़ाई के बजाय लंबाई में कार्य करने से ट्रैक्टर का खाली घूमना कम होगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। आपको जानकारी दे रहे थे शिबू चौज और जानकारी का विषय था इंजन व ट्रैक्टर का रखरखाव।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सोमवार 20 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और परसों मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कैंबल बे आज सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा व आज ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैंबल बे की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 21, 24 और 26 जुलाई को सुबह 8 बजे। एमवी भारत सीमा कार निकोबार जाने के लिए 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 22 जुलाई को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज 21 तारीख को सुबह 9 बजे नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा 23 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 28 जुलाई को सुबह 9 बजे। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11:30 पर क्षमा कीजिए एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हल्बे स्वराज द्वीप जाने के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा व कल सोमवार 20 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग रंगत जाने के लिए कल सोमवार 20 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। जाते और आते वक्त ये जलयान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सोमवार 20 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप जाने के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सोमवार 20 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। दोस्तों, आज बातें इश्क की। दोस्तों, इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं, ये दो रूहों का एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के हर मोड़ पर बस तेरा साथ चाहिए, मुझे सिर्फ वही प्यार और वही एहसास चाहिए।

दोस्तों, इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो हर पल दिल में महसूस किया जाए। मिलते हैं बहुत से लोग इस जिंदगी के सफर में, लेकिन आप वो सुकून हो जिसकी तलाश हमेशा से थी।

दोस्तों, प्यार, इश्क और मोहब्बत दुनिया का वह सबसे खूबसूरत एहसास है जिसके बिना दुनिया मुमकिन नहीं। इश्क एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी भाषा के बंधन में नहीं बंधता, लेकिन जब इसे शब्दों में पिरोया जाता है तो यह दिल को छू लेने वाला एहसास बन जाता है।

तो दोस्तों, इश्क के इस खूबसूरत एहसास से अब हमें दीजिए इजाजत। होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार। इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी सुनीता तिर्की और विषय था इश्क। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 304 कड़ी। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति।

मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण को सद्बुद्धि नहीं आती। श्री राम की शरण में न जाकर वो अपनी प्रभुता और पराक्रम का गान करने लगता है। मंदोदरी को अपना सुहाग अचल रखने की चिंता है, किंतु रावण की मदांधता बहुत अधिक हो गई है। वो सोचता है कि जब मैंने वरुण, कुबेर, पवन और यमराज को ही नहीं बल्कि काल को भी जीत लिया है तो मेरा अहित अब भला कौन कर सकता है। मंदोदरी को विश्वास हो जाता है कि उसके पति पर अब काल सवार है, अन्यथा इतना अभिमान उसे क्यों कर होता। सभा में मंत्रणा के नाम पर मंत्रीगण उसकी ठकुर सुहाती करते हैं। ये देख रावण का विवेकवान पुत्र प्रहस्त पिता को एक बार फिर समझाने का प्रयास करता है। कहता है, एक ही वानर आकर सोने की लंका जला गया। हे प्रभु, इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में तो बहुत प्रिय लग रही है, किंतु इनकी बात मानकर चलने में आगे दुख उठाना पड़ेगा। जगत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सुहाने वाली बातें कहते हैं, सत्य और प्रिय कहने वालों की संख्या कम होती है। मुझे कायर और भीरु न समझ, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए और नीति के अनुसार दूत भेजकर श्री राम से सद्भाव स्थापित कर लीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 304वीं कड़ी। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति, तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान।

श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ देश गान। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। तो पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे मीनू पुरुषोत्तम और रूना लैला। सुबह 9:00 बाल जगत कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर चर्चा होगी और उसके बाद आप सुनेंगे नन्हे मेहमान मोहम्मद जैद के साथ ली गई भेंटवार्ता। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन होगा। सुबह 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 सलाम सोल्जर्स कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11:30 पर जगजीत सिंह के स्वर में आप चंद गजलें सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे व बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर चर्चा होगी। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने के अलावा बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मेहदी हसन और कमलिनी मल्होत्रा। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर सर्वेश शहर की वार्ता होगी तथा राष्ट्रीय ध्वज दिवस व राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर चर्चाएं की जाएगी। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3:00 सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम। दोपहर बाद 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें तमालू गांव के चर्च ऑफ द होली क्रॉस के सदस्य द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत होगा। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण और शाम 4:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे निंजम मरपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ फिल्मी गाने आप सुनेंगे। संध्या 6 बजे संगीत संगिनी कार्यक्रम, धरती के गीत कार्यक्रम में 6:30 पर राजस्थानी लोकगीत आप सुनेंगे। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम, संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं का समय रहेगा। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे। 7:30 पर युवाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम, 8:30 पर रोजगार समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे गौरवगान कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे और रात 10 बजे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में विदुषी MRS बालमणि ईश्वर का गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 5:04 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और वापसी यात्रा में विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम और ठीक इसी समय सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुगम संगीत के शौकीन श्रोताओं को हम बता दें कि आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे मीनू पुरुषोत्तम और रूना लैला को। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 आप सुन पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर चर्चा और उसके बाद आप सुनेंगे नन्हे मेहमान मोहम्मद जैद के साथ ली गई भेंट वार्ता।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन होगा। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और दिन के 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस ब्रेक के बाद

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा विद्यार्थी विज्ञान मंथन में द्वीप समूह के 3 छात्रों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। लिटिल अंडमान के हडबे जटी पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया और मत्स्य संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में मत्स्य विभाग ने पहल करते हुए एक्सेस पास धारकों को वॉयज रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। नई दिल्ली में कल संपन्न हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सर्वाधिक पूर्व स्वीकृतियां श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह सम्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पारदर्शी प्रभावी और लाभार्थी अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करने में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उत्कृष्ट उपयोग के लिए प्रदान किया गया। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रजिस्ट्री HPR एवं HFR सैचुरेशन श्रेणी में द्वीप समूह को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला। यह उपलब्धि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री के व्यापक पंजीकरण के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मिली। समापन समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र शासित प्रदेश की ओर से राज्य नोडल अधिकारी डॉ. पी. लाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में अंडमान निकोबार के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। विज्ञान भारती NCERT और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित परीक्षा के राज्य स्तरीय शिविर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शिविर के लिए चयनित हुए। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीबे के कक्षा 7वीं के छात्र मास्टर ईशायु तावकर राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयन श्रेणी में विजेता बने। वहीं लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के कक्षा 6ठी के छात्र मास्टर हार्दिक चक्रवर्ती ने प्रथम तथा नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीबे की कक्षा 9वीं की छात्रा विदिशा मैती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन विद्यार्थियों के सम्मान में विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अटल सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रभारी एवं वैज्ञानिक डॉ. दिलीप कुमार झा ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में कल शाम पुरस्कारों की घोषणा करते हुए फीचर फिल्म श्रेणी के जूरी अध्यक्ष जयराज ने बताया कि अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है।

उन्होंने कहा कि अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार आनंद एल राय को उनके फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है स्वच्छता अभियान और मत्स्य। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लिटिल अंडमान के सीडी ब्लॉक स्थित ब्लॉक विकास कार्यालय द्वारा कल हडबे के ब्रेक वाटर जेटी पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जागरूक करते हुए कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक

प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लिटिल अंडमान के सीडी ब्लॉक स्थित ब्लॉक विकास कार्यालय द्वारा कल हडबे के ब्रेक वाटर जेटी पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जागरूक करते हुए कचरे का स्रोत स्तर पर पृथककरण, ठोस अपशिष्ट का जिम्मेदारी पूर्ण निस्तारण, एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग में कमी तथा स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन नियम 2025 के तहत संचालित सभी एक्सेस पास धारकों को प्रत्येक मछली पकड़ने की यात्रा पूर्ण होने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में वॉयज रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा इस साल जनवरी में अधिसूचना के अनुसार दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक मछली पकड़ने वाली नाव के संचालक को प्रत्येक यात्रा समाप्त होने पर संबंधित पंजीकरण बंदरगाह के राज्य मत्स्य विभाग को निर्धारित प्रारूप में वॉयज रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हितधारकों की सुविधा के लिए यह प्रारूप अंडमान निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। डिगलीपुर और ग्यारहचरमा में पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा कुत्तों के काटने से बचाव तथा रेबीज के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिगलीपुर पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उनकी टीम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में कुत्तों के काटने से बचाव पर जागरूक किया। विद्यार्थियों को पशु संख्या नियंत्रण के लिए टीकाकरण के महत्व पर जानकारी दी गई। पशु विभाग द्वारा ग्यारहचरमा के पशु चिकित्सा द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालीकट में भी इस समस्या के प्रति जागरूक किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय आइलैंड मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का आज अंतिम दिन है। पर्यटन कैलेंडर के प्रमुख आयोजनों में शामिल इस महोत्सव में प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पर्यटकों की भागीदारी देखने को मिल रही है। इस फेस्टिवल में स्थानीय उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक संगठनों और सांस्कृतिक संस्थाओं के स्टॉलों पर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। विशाखापत्तनम से रवाना हुआ यात्री जहाज एमवी स्वराजदीप के आज सुबह 10 बजे तक हेडू जेट्टी पहुंचने की संभावना है। यह जहाज 22 जुलाई को सुबह 10 बजे श्रीविजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। जहाज में सामान की लोडिंग 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी, जबकि यात्रियों का जहाज पर चढ़ना 22 जुलाई सुबह 7 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अंडमान के उपशिक्षा कार्यालय द्वारा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अंतर विद्यालयीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 30 जुलाई तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क तथा समग्र विकास को बढ़ावा देना है। दक्षिण अंडमान क्षेत्र के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा विद्यार्थी विज्ञान मंथन में द्वीप समूह के 3 छात्रों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। लिटिल अंडमान के हडबे जेटी पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया और मत्स्य संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में मत्स्य विभाग ने पहल करते हुए एक्सेस पास धारकों को वॉयज रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आदाब और जय हिंद। कहते हैं कि जहां भाषाएं थक जाती है वहीं संगीत बात करता है, और जब बात हमारे वतन की हो तो हर सुर सीधे रूह को छू जाता है। भारत के कोने कोने से मिट्टी की सौंधी खुशबू हमारी साझी संस्कृति और देश प्रेम के जज्बे को समेटे आज हम हाजिर है कार्यक्रम देश रागनी में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, वतन से प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह जीवन का सबसे अनमोल एहसास है। जब भी मातृभूमि का नाम आता है, दिल गर्व सम्मान और अपनत्व से भर उठता है। वतन के प्रति यही अटूट प्रेम और त्याग की भावना हमारे मन में राष्ट्रभक्ति का दीप जलाए रखती है। तो चलिए इस गीत के माध्यम अपने वतन के प्रति प्रेम को हृदय से महसूस करें।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम

श्रोताओं, मातृभूमि केवल हमारी जन्मभूमि नहीं, ये हमारी पहचान, संस्कृति और हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है। इस पावन धरा की रक्षा के लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया

उनका त्याग हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य ईमानदारी और समर्पण का संदेश देता है। तो श्रोताओं, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता के इस सशक्त संदेश को अपने हृदय में संजोते हुए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, हमारा देश अनेक भाषाओं और परंपराओं का संगम है। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधती है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजकर

30 मिनट हुए हैं और अब सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।

नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग अंडमान प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए अपनों के साथ मुस्कुराने का दिन हो। सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव आपके तन मन को नई ताजगी से भर दे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, आज है रविवार, आराम और अपनों के साथ समय बिताने का दिन। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब संडे आता है तो मन में खुशी की लहर उठती है ना दोस्तों। यकीनन आप में से कई श्रोता आज थोड़ी देर और आराम करने के मूड में होंगे, तो कुछ लोग अपने सुबह की चाय के साथ हमारी महफिल में शामिल हो चुके होंगे। तो आइए इस सुहानी सुबह को मधुर गीतों के साथ खास बनाते हैं। श्रोताओं, जिंदगी का हर पल अपने साथ एक नई कहानी और नई उम्मीद लेकर आता है। बीता हुआ पल याद बन जाता है और आने वाला नई संभावनाओं का संदेश देता है। इसीलिए हर पल को खुलकर जीना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जहाँ हर मोड़ पर एक नया किस्सा और हर पल एक नई याद हमारा इंतजार करती है। छोटी छोटी खुशियाँ और अनमोल लम्हे ही जीवन को खास बनाती है। तो आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में कारवान फिल्म का गीत।

श्रोताओं, दिल की बातें जब मुस्कान बनकर होठों पर आ जाए तो हर पल और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो सुनिए शान और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाजों में वांटेड फिल्म का गाना और इस सुहानी सुबह का आनंद लीजिए।

0: श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग अंडमान प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें कि इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुए हैं 7:47 और ये हुए 42 सेकेंड। तो श्रोताओं, उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, दिल हमेशा मासूम रहता है। छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना, सपने देखना और जिंदगी को पूरे दिल से जीना, यही तो दिल की खूबसूरती है। तो आइए सुनते हैं इश्किया फिल्म का गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

श्रोताओं, हर मुस्कान की अपनी एक बात होती है और हर अदा दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। कभी कोई नज़र तो कभी किसी का अंदाज़ पर मुस्कान ले ही आता है।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान का आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है। आशा है कि यह सुरीली सुबह मधुर गीतों के साथ आपको खुशनुमा बनाया होगा और आप अपने रेडियो दो शाइना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंडमान, बाय बाय।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचावास

0: केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी

0: हालांकि अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
1: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी

0: गाना पसंद है क्योंकि संगीत मन को शांत रखता है।
1: हाँ जी, तो आप किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं?
0: मुझे देशभक्ति और मधुर गीत पसंद है।
1: देशभक्ति और मधुर गीत अच्छे लगते हैं। देशभक्ति की गीतों की ओर आपकी रुचि कैसे गई?
0: क्योंकि देशभक्ति गाने एक ऐसा चीज होता है जिससे हमारे दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल सही जैद, यानी कि वो हमारे मन को संघर्षों की ओर ले जाती है ना? तो आप हमारे दोस्तों को कुछ गाना सुनाना चाहते हो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
0: मुझे सबसे अच्छा गाना सारे जहां से अच्छा लगता है।
1: तो चलिए नन्ही दोस्तों, जैद की पसंद का ये गीत आप सभी को हम सुनाते हैं।

0: में ऑनलाइन माध्यमों से भी कई सारे क्लासेस चलते हैं जिससे आप नई नई चीजें सीख पाते हो। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो शतरंज की?
1: मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता, लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर्स के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से देखता
0: हाँ,
1: हूँ।
0: जिससे कि आप उनकी प्लानिंग्स को सीख पाए, उनके चाल को समझ पाए, है ना? आप शतरंज का अभ्यास कई सारे रणनीतियों के साथ करते हो, तो जरा हमें ये बताइए, शतरंज को अक्सर लोग दिमाग का खेल कहते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। क्या आप वास्तव में केवल इसे खेल मानते हो या इससे बढ़कर इसे मानते हो?
1: बिल्कुल नहीं, शतरंज एक खेल ही नहीं बल्कि यह हमें अनुशासन और सोचने की क्षमता देता है। जैसे हमें शतरंज में अपनी अगली चाल के बारे में सोचना होता है, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी में भी अपने आगे के बारे में सोचना होता है।
0: जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि शतरंज बहुत कठिन है, सब नहीं खेल पाते। जो बच्चे या नए लोग इसे सीखना चाहते हैं, आप उन बच्चों को क्या कहोगे?
1: शुरुआत में यह थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जब आप इसके नियम जान ले तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: आपने कहा कि आप अगर अभ्यास करते रहोगे तो वो चीजें आप अवश्य सीख सकते हो। जैद, आजकल के समय में, आजकल के डिजिटल युग में शतरंज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है ना? तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हो?
1: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से लोग अब बैठे बैठे शतरंज खेल और सीख सकते हैं, यही है इसकी लोकप्रियता।
0: हाँ जी, आज का समय आसान हो गया है, घर बैठे आप किसी भी चीज की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हो। तो जैद, हमारे दोस्तों को बताइए कि शतरंज को लेकर आप अपने आगे के भविष्य में क्या प्लानिंग कर रहे हो?
1: मैं सोच रहा हूँ कि मैं शतरंज को तो अपना आगे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कुछ करके दिखा सकूं।
0: हाँ जी, क्योंकि आपने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की है, तो आपका सपना जरूर होगा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी जाओ। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप राज्य स्तरीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल करो। तो जैद, जाते जाते हमारे दोस्तों को जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या खास मैसेज देना चाहते हो, कुछ खास टिप्स?
1: मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, पढ़ाई और खेल दोनों को एक साथ लेकर चले। मेहनत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर रोज मेहनत करता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है।
0: बिल्कुल जैद, आपने कहा कि मेहनत करने से आप मुमकिन कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे साथ थे जैद, जिन्होंने आपको शतरंज से जुड़ी कई सारी बातें बताई कि उन्होंने अपने लाइफ में शतरंज को कैसे अपनाया और आप सभी को शतरंज की ओर प्रेरित कैसे किया। मैं आपको आपके भविष्य की काफी सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप शतरंज के खेलों में और आगे बढ़ते रहें। तो जैद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: तो जैद, आपने कहा कि शतरंज के खेल में आपने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेले हैं, तो साथ ही आप हमारे दोस्तों को बताइए कि एक शतरंज के खेल को खेलने में कई सारी रणनीतियाँ चाहिए होती है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी होती है, तो कुछ प्लानिंग हमारे दोस्तों के साथ आप साझा करोगे, कुछ टिप्स हमारे दोस्तों को दोगे?
1: मैं हर रोज पजल सॉल्व करता हूँ, शतरंज के संबंधित किताबें पढ़ता हूँ, नई ओपनिंग सीखता हूँ और अच्छे ग्रैंड मास्टर्स के मुकाबले देखता हूँ।
0: हाँ जी, किताबों में भी आपकी रुचि है, आप किताबों से भी सीखते हो, साथ साथ आज के समय

नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में उस चमकते हुए चांद को देखकर सोचा है कि क्या होगा अगर हम वहाँ पहुँच सके? आज हम आपको ले चलेंगे मानवता की सबसे बड़ी और साहसी यात्रा पर, जब इंसान ने पहली बार चांद की धूल पर अपने कदम रखे थे। तो अपने कान रेडियो के पास ले आइए, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। दोस्तों, 20 जुलाई का वह दिन पूरी दुनिया की निगाहें आसमान की तरफ टिकी थी। नासा का अपोलो 11 मिशन चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त इंसानों ने यह साबित कर दिखाया कि अगर हम ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह सिर्फ नील की जीत नहीं थी, यह पूरी मानव जाति की जीत थी। कल्पना कीजिए मेरे दोस्तों, एक ऐसा रॉकेट जो एक विशालकाय आग की गोली की तरह अंतरिक्ष में गया और एक ऐसी जगह उतरा जहाँ ना हवा है, ना पानी और ना ही हमारे जैसे पेड़ पौधे। यह वाकई में किसी जादुई कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। जब नील का दरवाजा खोला गया और सीढ़ियों से वे नीचे उतरे तो पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग अपनी सांस थामे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपना बायां पैर चांद की सतह पर रखा, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यह एक मनुष्य के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। बच्चों, इस वाक्य का मतलब गहरा है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का साहस पूरी दुनिया के लिए प्रगति के नए रास्ते खोल देता है। चांद पर कदम रखते ही इंसान ने ब्रह्मांड में अपनी पहुंच का पहला अध्याय लिख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद कैसा दिखता है, क्या

अभी हमारे पार्क जैसे मैदान है? बिल्कुल नहीं। चांद पर ना तो नीले रंग का आसमान है, ना ही बादल। वहाँ का आकाश हमेशा काला रहता है, चाहे दिन हो या चाहे रात। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर आप चांद पर होते तो आप एक ऊंची छलांग लगाते ही आसमान में उड़ने लगते। वहाँ कोई हवा नहीं है, इसीलिए वहाँ की शांति बहुत ही गहरी और रहस्यमय है। अंतरिक्ष यात्री वहाँ अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर और खास तरह के सूट लेकर गए थे, ताकि वे वहाँ सांस ले सके और अपना तापमान नियंत्रित रख सके। बच्चों, चांद पर जाने की यह कहानी सिर्फ विदेशों तक ही सीमित नहीं है। हमारा प्यारा भारत भी अब चांद की खोज में दुनिया के अग्रणीय देशों में शामिल है। हमारे चंद्रयान मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने वहाँ पानी की मौजूदगी और खनिजों के बारे में जो जानकारी दी है, वह भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत काम आएगी। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जब आप बड़े हो तो आप में से ही कोई चांद पर अपना रिसर्च सेंटर बनाने जाए। शायद वह कोई चांद का स्कूल हो या चांद की लाइब्रेरी। सपने देखना जीवन में कितना जरूरी है। जब लोगों ने सोचा था कि चांद पर जाना है तो कई लोगों ने इसे पागलपन कहा था, लेकिन उन्हीं सपनों ने आज हमें अंतरिक्ष युग में पहुंचा दिया है। अगर आप भी आज रात आसमान में उस चमकते चांद को देखें, तो बस इतना याद रखें, वहां इंसान पहुंच चुका है और चांद अब हमारे लिए सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक नया घर है। विज्ञान और जिज्ञासा के जरिए आप भी बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

की चादर ओढ़ी सोया है जो मौन खड़ा, वो चांद है जो सदियों से तारों के बीच में है खड़ा। कभी घटता कभी बढ़ता, कभी ओढ़े उजली चुनरी, कहानियों की दुनिया में है जिसके जैसा कोई ना दूसरा। पर क्या हमने बस देखा है केवल नजारों से ही आपको? नहीं, इंसानों ने तो छुआ है उस दूर बसे हुए उस मरुस्थल को। वह एहसास की एक गाथा थी, वह अद्भुत एक आविष्कार था। जब नील ने रखा कदम वहाँ तो पूरा जग ही सवरा था। वह शान धरा वह धूल भरी, वह काला काला आसमान, जहाँ ना हवा ना पानी है ना फिर भी बढ़ता है विज्ञान। सफेद सूट में सजे हुए वे यात्री जो ऊपर जाते हैं, अपने छोटे से यान में पूरी पृथ्वी की याद लाते हैं। देखो गौर से बच्चों आज उस चमकते हुए चकोर को, वो ला रहा है तुमको स्वयं अपनी नई नई उस ओर को। तुम भी लिखो नई इबादत अंतरिक्ष के हर कोने में, तुम ही तो खोजी बनोगे अब ब्रह्मांड के इस सोने में। ना डरो कभी तुम ऊंचाइयों से, ना घबराओ तुम इस राह से, विज्ञान के इस दीपक को जलाए रखो अपनी चाह से। आज जो चांद है बस एक समान, कल वो तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी मेहनत और लगन का फिर पूरी दुनिया में असर होगा। जो आज तुम देख रहे हो ऊपर, वो कल तुम्हारे पैरों तले होंगे, इंसान की इस जिद के आगे हर रहस्य अब खुलेंगे। चांद पर लिखो नाम अपना, तुम सितारों की ओर बढ़ो।

नन्ही दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुस्कुराते रहिए और सितारों की तरह चमकते रहिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब सुनिए हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश,
5: हेलो फरमाइश।

0: कुछ रिश्ते आवाजों से बन जाते हैं, दिल से निकले अल्फाज दिल तक पहुंच जाते हैं। आइए मिलकर गीतों के इस खूबसूरत सफर में आपकी फरमाइशों से आज की महफिल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। आज है 19 जुलाई और रविवार की सुहानी सुबह में ये कार्यक्रम पूरी तरह आप सबकी पसंद को समर्पित है। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58। एसटीडी कोड है 03192। तो चलिए फ़ोन उठाइए, हमसे जुड़िए और अपनी पसंद के गीतों से इस महफिल को और भी यादगार बनाइए। आइए बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूं मैम।
0: आशुतोष जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के पहले कॉलर हैं आप।
1: मैं अच्छा हूं मैम
0: जी,
1: बढ़िया हूँ।
0: और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: मैम जी? आज मुझे सुना दीजिए, 1978 में एक फिल्म रिलीज हुआ, फिल्म का नाम है आजाद।
0: हुँ?
1: और गाने का बोल है मैं हूँ तेरे प्रेम दीवानी। लता जी ने गाया इस गाने को, आनंद बख्शी जी ने लिखा है और आर डी बर्मन जी ने सुर से सजा इस गाने को
0: जी।
1: और मैम जी, मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: पहले मैम जी आप सुनेंगे,
0: धन्यवाद,
1: सुनेंगे पूरन वर्मा जी, सुनेंगे विजयपुरम से पूर्णिमा दीदी, सप्तमी विष्णु दीदी, मोनिका दीदी, धर्मवीर जी दिल्ली से, आसाम से प्रेमजीत जी, और महाराष्ट्र गंगाधर जी, और मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह भैया, राम बाबू शर्मा, रमेश प्रजापति, और भगवान सिंह परमार, राम बाबू मालती जी, मांगीलाल जी, त्रिपुरा से अविनाश जी, और नेटवर्क का सारे स्टॉक लेकर
0: जी। आप सभी अपने अपने मित्रों के साथ मिलकर सुनिए आजाद फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाई
0: जी, हमारी बात किन से हो रही है?
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला है दीदी, मनोज नामदेव
0: जी। शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद दीदी।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया है, आशीर्वाद है आपका, कृपा भगवान की बढ़िया है दीदी।
0: तो बताइए फिर क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी सिलाई वाली मशीन चलाते हैं, टेलर हैं दीदी
0: जी। बहुत अच्छा, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है संजोग।
0: संजोग मूवी का कौन सा गीत?
1: उसमें गाना है यशोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला।
0: जी बहुत ही सुंदर गीत चुना है आपने, तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत संजोग मूवी से।
1: बिल्कुल दीदी, सभी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: पद्मावत फिल्म का सुनवा दीजिएगा, घूमर वाला गाना।
0: जी ज़रूर सुनवाएंगे, कुछ अपने बारे में बताइए। हेलो फरमाइश के अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: जी फोन इन प्रोग्राम के अलावा जो फरमाइशी के गीत जो आते हैं ना,
0: जी हेलो डियर फ्रेंड, जी
1: जी हाँ हेलो डियर फ्रेंड होता है, और विजय पुरम से एक फोन आउट प्रोग्राम आता है वो सुनते हैं।
0: जी
1: हाँ जी, और जो व्हाट्सएप वाले जो कार्यक्रम आते हैं ना वो भी सुन लेते हैं दूसरी आकाशवाणी केंद्र पर।
0: जी और हाँ जी। हमारे श्रोताओं के लिए अपने गांव या उज्जैन के बारे में कुछ खास बात बताइए।
1: जी बहुत ही अच्छा शहर है उज्जैन, महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, और सावन महीने में तो काफी मतलब श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर।
0: जी तो प्रेम सिंह जी आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आप
1: प्रेम
0: कौन और
1: सिंह
0: कहाँ से
1: सिसोदिया
0: बोल
1: बोल
0: रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदो, जिला उज्जैन से।

0: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। जी, हमारी बात किन से हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का हंसमहल बुगला।
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दीजिए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है सदना मेरे साथ निभाना और उसमें गाने के बोल है बन हो रही, ऐसे की सुनवाइए गाना।
0: जी, जरूर सुनवाएंगे। कुछ अपने बारे में बताइए पूरन वर्मा जी,
1: जी
0: आज
1: मैडम बस
0: रविवार
1: यही
0: है,
1: है,
0: क्या करने का सोचा है?
1: जी मैडम बस यही है कि अगर आपके उधर बरसात हो रही है तो हमारी तरफ भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ 15 15 16 दिन हो गए तो बरसात
0: वैसे यहाँ पे अभी
1: क्योंकि
0: बरसात नहीं हो रही है, गर्मी है, तेज धूप पड़ रही है।
1: हमारे यहाँ मैडम खेतों में फसल तो बहुत ही, पर वो क्या है कि बाजरा बाया था अभी, पर बरसात का इंतजार है मैडम, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है कि अगर 2 4 दिन और नहीं आए तो नुकसान हो सकता है मैडम।
0: जी, जल्द आपके वहाँ जल्द से जल्द बारिश हो जाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। और वैसे छुट्टियों वाले दिन आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: जी मैडम छुट्टी हो तो हमारी, क्योंकि खेती बाड़ी किसान लोग है ना, तो वो तो उनकी छुट्टी नहीं होती मैडम कभी भी, क्योंकि वो तो सुबह शाम या दिन भर अगर काम है तो फिर वो काम ही करते रहेंगे
0: जी,
1: मैडम।
0: अपने लिए टाइम निकालना पड़ता होगा आपको।
1: जी मैडम वो
0: जी, तो सुनवा रहे हैं पूरन वर्मा जी आपकी पसंद
1: तो
0: का
1: कोई है।
0: गीत।
1: हेलो,
0: जी, दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: हाँ मैडम, सबसे पहले तो आप है
0: जी।
1: और पूर्णिमा मैडम बीजेपुरम से है, इसको लाइन से, और भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश पात्रे है, बिमल है, अमल है, धर्मवीर जी है, और जितने भी कॉलर लाइव आकाशवाणी विजयपुरम के जाने वाले श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ,
0: जी, सुनवा रहे हैं आपको आपकी
1: बोल
0: पसंद का
1: सुनवाइए क्या
0: गीत।
1: मैडम।
0: फिल्म है मेरे सजना साथ निभाना। सुनिए अपने सभी मित्रों के साथ।
1: थैंक यू मैडम।

0: ये सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:32 हुए हैं। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: জীবন এখন বড্ড ফাস্ট, তাই বাড়ি বসে হ্যাসল ফ্রি ব্যাংকিং এর জন্য সুইচ করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং এ,
2: যেখানে আপনি পাবেন ডেডিকেটেড ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট, যিনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনাকে স্মার্ট অ্যাডভাইস দেবেন এবং সমস্ত কাজ কমপ্লিট করুন লাইটনিং স্পিডে, অর্থাৎ সিমলেস ব্যাংকিং এক্সপেরিয়েন্স এন্ড মেনি আদার এক্সাইটিং বেনিফিটস।
1: আজই পৌঁছে যান নিজের নিকটবর্তী SBI ব্রাঞ্চে এবং অ্যাক্টিভেট করুন SBI প্রিমিয়ার ব্যাংকিং। টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই।
3: আপনার বিজনেস কো বাড়ানোর কে লিয়ে লিজিয়ে আকাশবাণী কা সহযোগ অর দিজিয়ে উসে বুলন্দিয়ো কে পাঙ্খ।
4: আপকা বিজনেস লোকাল হ্যায় ইয়া রাষ্ট্রীয়, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
1: Life is moving in fast mode. For hassle-free banking from the comfort of your home, switch to SBI Premier Banking,
5: where you get dedicated virtual relationship associate who understands your needs, offer smart advice, and get every task done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
1: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
6: श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए बात करें अगले कॉलर से। हेलो, फरमाइश
7: जी। मैम, जय श्री महाकाल।
6: जी, जय श्री महाकाल। बताइए, हमारी बात किन से हो रही है?
7: मैम, शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ।
6: जी, विदिशा से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बताइए, क्या आप नियमित रूप से आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रम सुनते हैं?
7: जी बिल्कुल मैम, मैं हेलो फरमाइश तो मिस नहीं करता हूँ।
6: जी, और कौन कौन सी प्रोग्राम है जो आप सुनते हैं?
7: देखिए मैम, जैसे कि मन की बात आता है तो वो भी सुनता हूँ मैं
6: जी।
7: और सारे कार्यक्रम अच्छे आते हैं मैम, पर यह है थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मैम।
6: जी, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
7: मैम, मूवी का नाम है मासूम और गाने के बोल रहेंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या।
6: जी, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। फिल्म है मासूम।
7: जी मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार बहन
0: नमस्कार जी, हमारी बात किन से हो रही
1: जी।
0: है?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, उत्तर प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल पटेल जी से बात हो रही
0: जी मांगीलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी। फिल्म का नाम रहेगा धरती,
0: जी
1: और
0: धरती फिल्म
1: गाने
0: से
1: के
0: कौन सा
1: बोल रहे
0: गीत?
1: हैं, ये मौसम अभी गा है, हवा भी जा, क्यों ना मचलेगा दिल मेरा ये।
0: जी आपने चुना है ये मौसम भीगा भीगा। बताइए वैसे आपके वहाँ मौसम का हाल कैसा है?
1: हाँ, मौसम आज से कुछ परिवर्तन हो गया है। 10-12 दिन से पानी नहीं गिर रहा था हमारे क्षेत्र में,
0: जी
1: तो आज से कुछ मौसम में बदलाव आया है। बढ़िया मौसम सुहावना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काले काले आसमान में बादल आ रहे जा रहे।
0: जी तो आज आप बहुत खुश हैं।
1: जी हाँ, बहुत खुश हैं बहन जी, क्योंकि
0: तो
1: हम किसान हैं तो हमारी फसल प्रभावित हो
0: फसल
1: रही
0: के
1: है
0: लिए बहुत
1: जल।
0: ज़रूरी है बारिश,
1: हाँ
0: तो आप ज़रूर खुश ही होंगे। तो आप इस
1: जी,
0: समय किस माध्यम से सुनते हैं कार्यक्रम?
1: मैं DTH के माध्यम से सुनता हूँ,
0: जी
1: क्योंकि फोर्ट विलियर हमारे मध्यपुर से तो न जाने कितने किलोमीटर दूर होगा, तो रेडियो पे तो इसका प्रसारण आता नहीं है,
0: जी
1: और वैसे मोबाइल ऐप पे आता है,
0: अच्छा
1: तो वो मोबाइल मेरे पास नहीं है, और है तो लेकिन अपने बच्चे के पास है, राजकुमार चंदेल, लेकिन मुझको चलाने नहीं आता।
0: जी।
1: मैं DTH के माध्यम से सुनता हूँ। और बहन जी, एक सुझाव और है मेरा
0: जी बताइए।
1: कि आज आज DTH पर प्रसारण नहीं आ रहा
0: अच्छा तो अच्छा जी,
1: जी।
0: जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हो सकता है DTH पर कोई दिक्कत आज हो गई होगी। जी हाँ
1: उच्च अधिकारी तक ये सुझाव पहुंचा
0: जी,
1: देना
0: हम आपकी बात को संबंधित विभाग तक ज़रूर पहुंचा देंगे।
1: जी।
0: तो अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म है
1: तो मैं कुछ
0: धरती। मित्रों को
1: मित्रों
0: याद
1: को
0: करना
1: याद
0: चाहते
1: करता
0: हैं जी, ज़रूर।
1: हूँ। हाँ, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, और तमाम लोकेंद्र वर्मा जी हैं हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश से, राकेश जी हैं शिमला से, शारदा प्रसाद जी हैं मथुरा से, और त्रिपुरा से हमारे मित्र हैं अविनाश जी, आंसू तो नीता बहन जी, वैशाली बिहार से डॉक्टर सितारे जी भी यही गाना सुनना चाहते हैं
0: जी, तो सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का ये गीत। सुनिए अपने सभी मित्रों के साथ।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो नमस्ते।
0: जी। नमस्ते, हमारी बात किन से हो रही है?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से आपकी नियमित श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: जी हेलो
1: लतीफ
0: फरमाइश।
1: अहमद रैना, लतीफ
0: हेलो हेलो फरमाइश।

0: स्पष्ट प्रसारण पहुंच पाता है आपका।
1: जी, तो आज कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
0: मैम इस समय भीगी भीगी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, मूवी का नाम रहेगा तेरे नाम, और गाना है नाचू ओढ़नी ओढ़ के लाल।
1: जी, बहुत ही सुंदर गीत चुना है आपने, तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत। फिल्म है तेरे नाम।
0: मैम थोड़ा सा एक नाम लेना चाहता था, मात्र एक
1: जी
0: नाम।
1: जरूर।
0: मेरी प्यारी सी और स्वीट सी सिस्टर है भारती राव, साथ में सप्तमी विष्णु कुंडुम जी हैं, दीदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं।
1: जी, हम उम्मीद करते हैं इस वक्त आप दोनों इस वक्त रेडियो सुन रहे होंगे और खुश होंगे ये गीत सुनकर। तो सुनवा
0: जी
1: रहे
0: मैम
1: हैं
0: बहुत
1: ये
0: बहुत
1: गीत।
0: बहुत बहुत आभार, नमस्कार।

गीतों की ये महफिल यूं ही सजती रहे, हर चेहरे पर मुस्कान खिलती रहे, फिर होगी मुलाकात इसी प्यार के साथ, आपकी फरमाइशों की ये डोर यूं ही जुड़ती रहे। दोस्तों, आपकी प्यारे प्यारे कॉल, दिल से भेजे गए संदेश और शानदार गीतों की फरमाइशों ने आज के हेलो फरमाइश को सचमुच यादगार बना दिया। आप सभी का धन्यवाद। अब मुझे श्रीविद्या को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार सुबह 10 बजे नई फरमाइशों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रम। नमस्कार।

एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 11:02 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के विशेष देशभक्ति कार्यक्रम सलाम सोल्जर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम समर्पित है उन वीर जवानों को जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। आइए संगीत के माध्यम से उन जाबाज सपूतों को दिल से सलाम करें।

की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

श्रोताओं, देशभक्ति त्याग साहस और कर्तव्य से पहचानी जाती है। हमारे वीर सैनिक हर पल देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहते हैं। उनका यही जज्बा हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, देश प्रेम वो भावना है जो हर मुश्किल घड़ी में हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे वीर सैनिकों का साहस और समर्पण इस तिरंगे की आन बान और शान को हमेशा ऊंचा बनाए रखता है। आइए अपने दिल में भारत के प्रति सम्मान और गर्व की यही भावना हमेशा बनाए रखें।

श्रोताओं, आइए अपने वीर सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को हमेशा याद रखें और उनका सम्मान करें। इसी संदेश के साथ सलाम सोल्जर्स कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए गजल। श्रोताओं नमस्कार, आपका स्वागत है इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। जब अल्फाज दिल से निकल कर सुरों में ढलते हैं तो वो सीधे रूह को छू जाते हैं। आज की इस महफिल में साथ है गज़ल की वो जादुई आवाज़ जिसने एहसासों को नई पहचान दी, जगजीत सिंह। आइए सुनिए इनकी आवाज़ में चंद गज़लें।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में एक गजल। उम्मीद है श्रोताओं, आज की गजलों ने आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दी होगी। आशा करते हैं इसी तरह संगीत आपके जीवन में खुशियां और अपनापन ऐसे ही घोलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी।

यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर

श्रोताओं, अभी आप कमलिनी मल्होत्रा को सुन रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार थे मेहदी हसन और कमलिनी मल्होत्रा। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं।

नमस्कार प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सभी? ज़रूर व्यस्त होंगी क्योंकि रविवार का है दिन और सभी अपने छूटे काम निपटा रहे होंगे, है ना? और आप भी ज़रूर व्यस्त होंगी, पर ठहरिए, थोड़ा रुकिए और अपने रेडियो की आवाज़ बढ़ाइए क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम घर संसार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। यहाँ हम जानते हैं कुछ नहीं पाते, कभी कभी करते हैं मुलाकातें और सुनते हैं सुनहरे गीत। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ, जो कहता है कि रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। और बहनों, मुझे विश्वास है कि इस सुविचार को आप समझ ही गई होंगी, है ना? तो चलिए अब रिश्तों से जुड़ा एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

बहनों, वैसे तो इस समय आसमान में सूरज दिख रहा है, लेकिन आइए आज हम चांद की बात करें, क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। तो आइए सर्वेश चाहर जी से इस विषय पर वार्ता सुनते हैं और चांद को थोड़ा और जानते हैं।

मेरी सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। बहनों, आज मैं आप सबको आगामी 20 जुलाई को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय चंद दिवस के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। बहनों, जैसा कि आप जानती ही होंगी कि हजारों वर्षों से मानव सभ्यताएं आकाश की ओर देखती जा रही हैं और चंद्रमा हमारे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की उत्पत्ति तथा उसके रहस्यों पर विचार करती रही हैं। बहनों, दूरबीन के आविष्कार के बाद पृथ्वी से किए गए वैज्ञानिक अवलोकनों ने हमारे इस खगोलीय साथी को समझने में महत्वपूर्ण सहायता की। आज भी चंद्रमा वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज और मानव जिज्ञासा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस को 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति की सिफारिश पर प्रस्ताव ARES 7676 के माध्यम से घोषित किया। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। बहनों, यह दिन मानव इतिहास की उस महान उपलब्धि की याद दिलाता है जब 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचे, जबकि माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में कमांड मॉड्यूल में उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहनों, यह वह ऐतिहासिक समय था जब मानव पहली बार किसी अन्य ग्रह की सतह पर पहुंचा था। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द थे, यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग है। बहनों, चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना

वैज्ञानिक खोज का केंद्र रहा है। हमारे ऋषि मुनि कवियों और साहित्यकारों ने चंद्रमा को सुंदरता, शांति और प्रेम का प्रतीक माना है। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी चंद्रमा का विशेष महत्व है। अनेक पर्व, त्यौहार, व्रत और धार्मिक परंपराएं चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं माना जाता है। वहाँ दिन और रात बहुत लंबे होते हैं तथा तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस का उद्देश्य केवल चंद्रमा पर मानव की पहली यात्रा को याद करना ही नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी है। यह दिन हमें विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। बहनों, हमारे भारत ने भी चंद्र अनुसंधानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद चंद्रयान 2 ने अनेक वैज्ञानिक जानकारियां प्रदान की। वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल और सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को इस क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता दिलाई। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। इस उपलब्धि ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया। बहनों, आज विश्व के अनेक देश चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधनों की खोज और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में चंद्रमा अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। बहनों, इस मिशन में हमारी कुछ प्रमुख महिला वैज्ञानिकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसा कि डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, जो रॉकेट वुमन के नाम से मशहूर। इस वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 में मिशन डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले वह मंगलयान में भी अहम पद पर थीं। हमारी दूसरी वैज्ञानिक कल्पना कलाहस्ती हैं। इस एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लूनर लैंडर विक्रम के डिज़ाइन और निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहनों, इसके अलावा एन वनीता, जिन्होंने चंद्रयान 2 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया, मौमिता दत्ता और मीनल रोहित जैसी वैज्ञानिकों ने भी इस मिशन को सफल बनाने में अपना तकनीकी सहयोग दिया। हमारे सभी विद्यार्थियों को इस दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए, नई तकनीकों को समझना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। जिज्ञासा, परिश्रम और नवाचार ही सफलता की कुंजी है। मेरी सभी बहनों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास करे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आइए हम सभी विज्ञान का सम्मान करें, नई खोजों के लिए प्रेरित हों और अपने देश को विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। धन्यवाद।

बहनों, चंद्र दिवस पर चांद की बातें हों और गीत न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? सर्वेश चाहर जी की वार्ता से आपने अपने ज्ञान को तो बढ़ा लिया। चलिए अब चांद पर एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

बहनों, चलिए अब अपनी बातों को ले चलते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज की ओर, जो वर्ष 1947 में भारत संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था और तारीख थी 22 जुलाई। हमारे ध्वज के विकास की कहानी 1904 से शुरू होती है, जब सिस्टर निवेदिता द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया, जिसमें सफ़ेद कमल और वंदे मातरम अंकित था और साथ ही लाल रंग की पृष्ठभूमि पर वज्र। फिर 1906 में कलकत्ता में पहला तिरंगा लहराया गया, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की क्षैतिज पट्टियां थीं। ध्वजा में कमल के फूल, सूर्य, अर्धचंद्र और वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बाद 1907 में यह ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में फहराया गया, जिसमें हरा, केसरिया और लाल रंग की पट्टियाँ, जिसमें कमल के फूल, वंदे मातरम, सूर्य और अर्धचंद्र चित्रित थे। फिर 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रस्तुत किया था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियाँ थीं।

जिसमें ब्रिटिश यूनियन जैक, अर्धचंद्र और सितारा और सप्तऋषि विन्यास में तारे शामिल थे। 1921 में यह ध्वज पिंगली वैक्या द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो आंध्र प्रदेश से एक स्वतंत्रता सेनानी, भाषाविद और बहुविषयक विद्वान थे। उन्होंने लाल, सफेद और हरे रंग के ध्वज का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र में चरखा था, जो एकता और स्वावलंब का प्रतीक था। बहनों, वर्तमान भारतीय ध्वज के स्वरूप का श्रेय मुख्य रूप से इसी डिजाइन को दिया जाता है। लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को ध्वज में अपनाया गया। ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां थी, जिसके केंद्र में चरखा दर्शाया गया। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। 1947 में इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चरखे को अशोक चक्र से प्रतिस्थापित किया गया। बहनों, हमारा ध्वज तिरंगा, जिसे हम कहते हैं, उसमें तीन रंग होते हैं। तीन रंग केसरिया, केसरिया देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता, सत्य और शांति को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता, विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है, जो भारत की कृषि परंपरा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र कहा जाता है, विधि, न्याय और जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र दर्शाता है कि गति में जीवन है और स्थिरता में मृत्यु। ध्वजा को फहराने, संभालने और उसके प्रति सम्मान के नियम भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा निर्हित किए गए हैं। बहनों, चलिए मिलकर इस दिवस को मनाते हैं।

बहनों, क्या आप जानती हैं आप तक हम सबसे पहले कब पहुंचे थे, किस जगह आपसे हमारा सबसे पहले रिश्ता जुड़ा था और आज भी कायम है और आगे भी रहेगा। बहनों, वो दिन था 23 जुलाई 1927 का, जब पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और यह दिन हमारे देश के इतिहास में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का एक प्रतीक बन गया था। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा से हुई थी और आज़ादी के बाद AIR का तेज़ी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया, जिसने पूरे देश को एक जोड़ में बांध लिया, जिसमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों के मोती शामिल हैं। भारत के विकास में आकाशवाणी का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यह सिर्फ एक रेडियो ब्रॉडकास्ट ही नहीं है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का, उन्हें नई और सही जानकारियां देने का, शिक्षा को और भी दिलचस्प तरीके से बच्चों तक पहुंचाने का, संगीत को जीवन का माध्यम बनाने का और सभी के दिलों के तार को जोड़कर रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तकनीकी प्रगति के साथ आकाशवाणी ने भी अपने आप को आगे बढ़ाया है और आज आप हमसे सिर्फ अपने मोबाइल सेट के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आज रेडियो प्रसारण के साथ आपका रिश्ता 90 साल से भी आगे बढ़ चुका है और हमारा आपसे रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। इन बीते सालों में हमारे देश में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उस समय भी राष्ट्रीय प्रसारण ने पूरे देश को बांध कर रखा। चाहे जानकारी की बात हो या फिर मनोरंजन, वह कभी भी रुका नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों। बहनों, आपसे जो हमारा रिश्ता जुड़ा, उसके महत्व को जानना और नई पीढ़ी को भी

डोर में बांधना ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। तो चलिए इस दिवस को मिलकर मनाएं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपका प्रोत्साहन, आपका साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को मनाने का सबसे सही तरीका है। तो बहनों, आप सबको इस दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने कुछ नई बातों के बारे में भी जाना होगा। तो चलिए, अब अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: weeks. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium. In cricket, the series-deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout over invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts
1: history. Upahar Samachar ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात

0: लेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी

0: भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की 2री बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित

0: की बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31:30 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2:32 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म जन्नत 2 से। आवाज है शफाकत अमानत अली की। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। आवाज़ है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। नदीम श्रवण की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया समीर ने।

0: श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है समीर की लिखी एक गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया जतिन ललित ने। फिल्म है प्यार तो होना ही था और आवाज उदित नारायण की है।
1: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
2: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो।
2: Okay.

श्रोताओं, अभी आपने सुना लाइफ इन मेट्रो फिल्म का गीत। आवाज़ थी के और साथियों की, अमिताभ वर्मा के लिखे बोल थे और धुन बनाई थी प्रीतम ने।

0: और अब लीजिए सुनिए इश्क फिल्म का एक गीत, आवाज़ है उदित नारायण और विभा शर्मा की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अनु मलिक ने।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: I love you.
3: Yeah!

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम।
3: विविध भारती
4: FM श्री विजयपुरम
5: 100.9 आपका हम सफर।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर की 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

लबु पी हंसी दिल में सुकून सा रहे, हर दिन कोई अपना सा जुनून सा रहे। शुरू में जो ढले वही पल खास बन जाए, यूं ही हर लम्हा जिंदगी का गीत सा रहे। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। श्रोताओं, कभी कभी साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शब्द कम पड़ जाए तो एहसास बोल पड़ते हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, इसे बनाना पड़ता है। बस निभाने की इच्छा होनी चाहिए।

दोस्तों, ज़िंदगी में सब ठीक होना ज़रूरी नहीं, पर उम्मीद का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, मुश्किल दौर गुज़र जाएगा, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए।

श्रोताओं, इस समय आप 100.9 विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। इस समय दोपहर के 3:41 हुए हैं।

दोस्तों, कुछ रिश्ते बिना वजह दिल से जुड़ जाते हैं। ना कोई नाम, ना कोई शर्त, बस एहसास खास हो तो वक्त के साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग हमसे मिलना ऊपर से ही तय होकर आता है।

दिल अक्सर वही महसूस करता है जो समझ नहीं आता। कुछ बातें अधूरी रहकर भी खूबसूरत होती हैं। हर एहसास को नाम देना ज़रूरी नहीं, कभी-कभी शायद ही काफ़ी होता है।

दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हर पल को जीना ही असली जीत है। अपनों के लिए तो बहुत जीते हैं हम, कभी खुद के लिए जीना सीखिए, फिर देखिए हर रास्ता खूबसूरत लगने लगेगा।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

श्रोतों, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो अब यहीं समाप्त होता है। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: हत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
1: लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
2: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार।

0: निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: पुराना लग रहा नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुनाओ, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई। कहती और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी।
2: हाँ, मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिख

0: छपाना और फिर वो छपाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे, ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है। लेकिन चलो, मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
0: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ, जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते, मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे। कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए। उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियाँ मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुँच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर, चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को, यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओ डियर, चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, मछुआरी का, तुलसा नाम की। हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी इस रिहर्सल के लिए। रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाड़ा, मतलब मछुआरे का, जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है।

0: और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती,
1: जी
0: गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और
1: वाह
0: मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा। और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे, कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: हाँ, कि
1: सही
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं। और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी,
1: हाँ,
0: क्यों,
1: ये
0: हाँ
1: कमाल की बात है कि आप
0: हाँ
1: बड़ी
0: नहीं
1: शरारती थी,
0: नहीं
1: रंजदार
0: शरारती
1: थी।
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी
1: बस
0: शरारती, लेकिन
1: जरूरत
0: मेरी
1: भर थी।
0: माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे, तुम सही की तरह पिटाई करने का, हाँ।
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड, कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना,
1: वाह वाह,
0: हाँ,
1: बड़ा प्यारा
0: तो
1: था ये।
0: हाँ बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती ही थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी, नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी, नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे, हाँ, दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से।
1: गजब।
0: और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह।
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी, फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्गुसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पूना में कि सही के गुड़िया की शादी,
1: गजब गजब, ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ शादी
0: हाँ
1: की गई
0: जी। और
1: मुझे ना।
0: मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ, ये भी एक विडंबना
0: हाँ,
1: की बात है।
0: लेकिन
1: ये
0: हाँ
1: वाला जिक्र आगे की तरफ
0: ओके
1: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे।
0: हाँ
1: लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं,
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: लगता है उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह
1: बढ़ा रहा
0: क्या
1: है,
0: बात,
1: तो वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थीं और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी, और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया,

0: इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
1: जी।
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन
0: तो,
1: शैली का।
0: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
1: हाँ,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: बड़ा मजेदार
0: हाँ
1: है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी, और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
1: वाह
0: कहानी, और
1: वाह,
0: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
1: जी
0: राम
1: जी
0: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर हुए।
0: गाने
1: जी
0: वाले हैं,
1: जी
0: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है? और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुरई की नोक अटकती है, और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है,
1: आती है।
0: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो
1: हाँ
0: उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो, और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह
0: ये दरअसल पर्दे पर जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी
1: हैं,
0: देखो
1: वो
0: वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो हैं वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली
0: हाँ
1: ये कहा जा सकता है, क्योंकि माँ
0: जी
1: भी
0: हाँ
1: मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स मैं नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की,

0: साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा। ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार, और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था, क्योंकि शुद्ध भाषा और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो पूरा
0: ब्रह्मणि
1: याद है,
0: बड़े,
1: शिवतांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: भारी
0: होते हैं,
1: होते हैं,
0: वो
1: खींच के
0: ऊंई
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओ हो, तो आप ऑडिशन के कहते? मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओ हो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी,
1: जी
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया
1: वाह।
0: और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ
1: अच्छा अच्छा
0: दिन का
1: वाह,
0: जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई।
0: 3 गुना, फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश

0: थी तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पियर बनी दीदी नाम से। हाँ तो वो तो बात बनी फिर, दैट वॉज ग्रेट फन, आई एंजॉय
1: और तब आप
0: दैट।
1: बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं ट्रंक कॉल नहीं, वह
1: हाँ
0: बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी।
1: जी
0: तो तीन जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती हैं?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा ऊ हो गया, मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना,
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: सर
1: वाह।
0: हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: तारीफी करती
0: बेचारी
1: रहे।
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम
1: जी
0: माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से
0: आवाज से,
1: वाह।
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि
1: जी
0: ताई ताई बोलते हैं यू नो,
1: वाह।
0: वो दोबारा नहीं, कभी नहीं,
1: लेकिन
0: दोबारा
1: जिनका
0: नहीं
1: नंबर
0: होगी।
1: आप ढूंढ रही थी,
0: हाँ
1: गदी
0: हाँ
1: माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी
0: हाँ
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा कौन
1: दो
0: सा?
1: आंखें 12 हाथ उन्होंने
0: अरे
1: लिखी थी, जो
0: ओके,
1: ओपन जेल कंसेप्ट पर जो
0: कमाल है,
1: फिल्म थी,
0: इत्तेफाक की
1: वो
0: बात।
1: तो गदी माँ ने ही लिखी
0: यस
1: थी, है
0: सुनिए
1: ना। तो
0: सुनाइए,
1: मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहां जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड,
1: हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और
1: जी
0: नाटक करने शुरू
1: जी
0: किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे,
1: हाँ,
0: 7-8 नाटक थे शायद।
1: 10-12।
0: बाप रे जी।
1: हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है, और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं, और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मणती बोर, एक पहा किती तरी थोर, वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
0: जी
1: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं, वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने, वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर, वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह
1: हाँ,
0: वाह वाह, क्या बात
1: कि
0: है।
1: सही, तुझी श्रुति का आइकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली, और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीजरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी तो पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से, डेकन जिमखाना जाती थी बस से। हाँ, 3 नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात, तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी, और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान, चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
0: जी
1: बताती हूँ,
0: जी जी
1: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था।

0: और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला धमका ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप। और वहां देखा, अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस, ये पत्ते नगरी के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरी का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते हैं
0: हैं,
1: लोग।
0: कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा। सचमुच? हाँ
1: वो एक लड़की
0: हाँ वो
1: दिखी
0: नीचे
1: और
0: दिखती है
1: वो
0: नेहा।
1: पत्ते
0: हाँ
1: से फैसला करते हैं कि
0: अच्छा
1: जिसके
0: अच्छा
1: पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा ओ
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो बुष्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर और
1: बिल्कुल
0: उनको
1: बारी बारी
0: बहुत।
1: से वो फारूक
0: हाँ
1: शेख रह जाते हैं।
0: हाँ
1: चश्मे बहादुर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने
0: हाँ
1: ताश से ताश
0: हाँ
1: जोड़ दिया, और मुझे लगा यहां चश्मे बहादुर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर
0: कौन
1: की
0: कौन
1: कहानी
0: सा
1: चल
0: गाना
1: रही है,
0: सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल
0: खड़ी।
1: सुनते,
0: हाँ
1: काली घोड़ी द्वार
0: हाँ हाँ
1: खड़ी, वाह सुनते।

चकित भये सगरे मगरे काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है।
1: जी
0: ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना,
0: जी।
1: इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: जी, तो वो
1: हाँ
0: अखबार में विज्ञापन देखा
1: हाँ
0: आपने।
1: तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है।

0: उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
1: अच्छा ऐसे ही कह
0: सकता है
1: दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। से एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके हैं आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी।
1: जी
0: एनीवे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा NSD में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी।
0: हाँ,
1: बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया।
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ, कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं। और वो मुझे मज़ा भी नहीं था, और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जा रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओ
0: में
1: जी।
0: थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
1: वाह।
0: और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है,
1: वाह
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हिली। हमें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से। और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
1: जी
0: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया। दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी, राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं तो

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही हैं।

0: श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी।

नुकसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन की इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे जाए। इंतजार कभी

सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता।

जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की बूंदें यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे है और अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं तारा देवी और सोनाली विश्वकर्मा कामराज नगर श्री विजयपुरम से, इनकी फरमाइश पर डॉन फिल्म का ये गीत।

0: तुम सुन रहे हैं?
1: हाँ।
0: तेरी कसम
1: आऊंगा।
2: अब लेते हैं अगली फरमाइश झारखंड से संगीता गोप और दीपाली गोप की।

0: बम बम कर, बम बम कर, बम बम कर।
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा।
2: श्रोताओं, अब सुनते हैं आरजीटी रोड श्री विजयपुरम से रिश्ना की फरमाइश पर कुछ कुछ होता है फिल्म का शीर्षक गीत, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है बम्बू फ्लैट से सफीना बेगम की फरमाइश पर।

श्रोताओं, अगले रविवार संध्या 6 बजे हम अपने आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप संगीत संगिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत के तहत राजस्थानी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत राजस्थानी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निशुल्क मोड। कार्यक्रम में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्रारूप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सर्चिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी

आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoairportblair@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharati.gov.in #NIPP या akashvani.gov.in #file/NIPP.PDF देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। एक और आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी आवश्यक सूचना।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे, इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अंडमान निकोबार कमांड द्वारा हिस्ट्री ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से कार्वाइंस को समुद्री तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। सिंधु ने फाइनल में जापान की तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर अपना पहला सुपर 750 खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स

खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। अंडमान निकोबार कमान द्वारा हिस्ट्री ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मिलिट्री पर्सपेक्टिव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक विकास और उनकी सामरिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। ऐतिहासिक अभिलेखों, सैन्य अभियानों और भू राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर भारत की रक्षा व्यवस्था में द्वीप समूह की भूमिका का सैन्य दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की पहली त्रिसेवा कमान के रूप में अंडमान निकोबार कमान के विकास में द्वीप समूह के योगदान को भी रेखांकित किया गया। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विनीत मेरकाटी AVSM ने प्रस्तुति टीम के शोध और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्ययन द्वीप समूह के ऐतिहासिक और सामरिक विरासत को समझने तथा भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातीय कल्याण निदेशालय मुख्य भूमि के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनजातीय मरीजों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से मुख्य भूमि रेफर किए गए पात्र निकोबारी अनुसूचित जनजाति मरीजों के इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना दिल की बीमारियों, किडनी, कैंसर और अन्य मुख्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कवर करती है। इस वित्तीय सहायता में चिकित्सा जाँच, उपचार, दवाओं और परिवहन का खर्चा शामिल है। योजना के तहत उपचार और परिवहन की अनुमानित लागत का 90% हिस्सा अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में जारी किया जाता है। शेष 10% हिस्सा उपचार पूरा होने के बाद निर्धारित दस्तावेज जमा करने पर जारी किया जाता है। जो पात्र निकोबारी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे जनजातीय कल्याण निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद ने समेकित क्षेत्रीय केंद्र तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से हाल ही में 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री विजयपुरम स्थित उद्योग निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों में विकास संबंधी विलंब और दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान, समय पर रेफरल तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप के संबंध में प्रशिक्षित कर सामुदायिक स्तर पर समावेशी पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज कल्याण निदेशक रविंदर कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं को प्रारंभिक पहचान और समय पर उचित उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में ऋषिकेश देशपांडे, पुनर्वास चिकित्सक NIEPID सिकंदराबाद ने विकासात्मक मापदंडों, विकास संबंधी विलंब की पहचान, क्रॉस डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग, ई सानिध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेफरल प्रणाली तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी दी। कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए द्वीप समूह के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

0: एक पात्र संगठन को 25,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए सांस्कृतिक संगठनों का एक पंजीकृत कार्यालय, कला संस्कृति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि से सक्रिय होना अनिवार्य है। इच्छुक संगठन अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ 18 अगस्त तक कला एवं संस्कृति निदेशक के पते पर जमा कर सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप प्रशासन और विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड या कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। खेल एवं युवा मामले विभाग, पर्यटन विभाग के सहयोग से 25 और 26 जुलाई को कार्बाइन स्कोप समुद्र तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य बीच वॉलीबॉल को बढ़ावा देना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। सभी वॉलीबॉल खिलाड़ियों और टीमों से 23 जुलाई तक वॉलीबॉल कोच अब्दुल खलीज से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत अल्पकालिक मुफ्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में डिजिटल मित्र, फैशन डिजाइनर, ऑटोमोटिव बॉडी पेंटिंग तकनीशियन और मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग तथा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर शामिल हैं। इसमें प्रवेश के पात्र इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई तक संस्थान के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ से संपर्क कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उधर डीब्रेड में लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की गई है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा 30 जुलाई को समय सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जवाहर नवोदय विद्यालय छोलदारी में कक्षा छठी में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी 31 जुलाई तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अंडमान निकोबार कमांड द्वारा हिस्ट्री ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से कार्बाइन स्कोव समुद्री तट में बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉलीबॉय कल सोमवार 20 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 21 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 22 तारीख को सवेरे 7 बजे एमवी हेडवे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। 23 तारीख को सवेरे 7 बजे यह जलयान डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग 24 तारीख को सवेरे 7 बजे इन्हीं स्थानों के लिए रवाना होगा और 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी भारत सीमा 25 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा।

कल्याण डिग्रीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटा 24 तारीख को सवेरे 7 बजे इन्हीं स्थानों के लिए रवाना होगा और 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी भारत सीमा 25 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिग्रीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 26 तारीख को दोपहर 2 बजे डिग्रीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबलवे 21 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा। ये जलयान उसी रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए अगली यात्राएं 24 तारीख और 26 तारीख को भी होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड 22 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा और उसी दिन 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापसी करेगा। एमवी बम्बुका 23 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा, उसी दिन 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी भारत सीमा 21 तारीख को दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम से कारनिकोबार के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 22 तारीख को शाम 4 बजे कारनिकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान, कारनिकोबार, चौरा, तरासा, कचाल और ननकौरी होते हुए कैंबलबे के लिए रवाना होगा। 26 तारीख को दिन में 12 बजे ये जलयान कैंबलबे से छूटेगा और इन्हीं सब बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। जलयान नालंदा 21 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबलबे जाएगा। 23 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंबलबे से छूटेगा और ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबलबे के लिए अगली यात्रा 28 तारीख को सुबह 9 बजे होगी। 30 तारीख को ये जलयान सवेरे 8 बजे कैंबलबे से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

अब सुनते हैं जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचना समाप्त हुई।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम के तहत फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है जब दिल किसी पे आता है फिल्म से। आवाजें राजेश कृष्णा और सौमी रॉय की है। गीत रचना देव कोहली की और संगीत संदीप चौटा का।

अब सुनते हैं ना घर का ना घाट का फिल्म से श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाजों में ये गीत।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर, यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनते हैं युवाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58, और हमारा STD कोड है 031 92। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अपना पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: सर मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए आज
1: और
0: का आपका
1: सर,
0: दिन कैसा गया?
1: और सर आज का दिन तो बहुत बढ़िया गया, और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया गया।
0: जी हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तनुश्री जी,
1: पर सर
0: जी बोलिए
1: आपका कार्यक्रम हमें DTH पर नहीं सुनने मिल रहा सर।
0: जी।
1: आपका कार्यक्रम है ना, ODTH पर नहीं सुनने मिल रहा।
0: जी हमारे जो ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए न्यूज़
1: हाँ तो
0: ऑन एयर।
1: हाँ मोबाइल से
0: हेलो म्यूजिक लवर्स।

हेलो हेलो दोस्तों, शायद किसी कारणवश हमारे श्रोता से हमारा संपर्क टूट गया है। जब तक अगले श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: जी, नमस्कार। आपका नाम
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर
0: जी।
1: जी।
0: भगवान सिंह जी, बताइए कैसे हैं आप
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हो
0: जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताइए, आज रविवार का दिन कैसा गया आपका?
1: सर? बहुत बढ़िया दिन गया। अभी हमारे इधर बरसात नहीं हुई है सर, बरसात की रास्ता देख रहे हैं।
0: जी, तो आपके वहाँ अभी तक मतलब शुरुआत से अभी तक बारिश नहीं हुई नहीं है और
1: नहीं नहीं सर,
0: गर्मी?
1: अभी नहीं हुई है। बाकी फसल तो
0: जी
1: हमारी 25 दिन की हो गई है सर।
0: जी जी तो अभी भी आपके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है कि मौसम में थोड़ा बहुत
1: हाँ
0: परिवर्तन आया है?
1: हाँ सर, कल से परिवर्तन हुआ लेकिन हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई
0: जी
1: है
0: जी जी
1: जी। सर
0: तो बताइए भगवान सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है लोफर और गाने के बोल हैं कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, ये वाला गीत सुनना है सर जी?
0: जी, और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, हमारी बहन है पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम से, तनुश्री बिटिया है, गजराज लोधी जी हैं, केसी सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति जी, मांगीलाल चंदेल जी, राकेश जी हैं शिमला से, बहन संगीता देवना जी, आशुतोष देवना जी, अविनाश तेली जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और गोल्डी जी हैं, शिवा लोहट जी हैं, राकेश जी हैं, और लोकेन वर्मा जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर, आपको डेलीकेट रहेगा।
0: ठीक है भगवान सिंह जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: जी, नमस्कार। आपका नाम?
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने शहर उज्जैन के बारे में बताइए।
1: जी, उज्जैन शहर बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन शहर है। महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है
0: जी
1: जी, शिप्रा किनारे है, जहाँ पर सावन महीने में दूर दूर से मतलब कांवड़ यात्री आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए
0: जी
1: जी। और जब भी तीर्थ यात्री आते हैं ना, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। आने जाने के लिए रास्ते चौड़े कर दिए गए हैं, और जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है निःशुल्क।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: बताइए,
1: हाँ
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, गदर फिल्म का सुनवा दीजिएगा, ऊर्जा काले कावा।
0: जी तो ठीक है प्रेम जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: जी, नमस्कार। आपका नाम
1: मैं सत्यम बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कानपुर से।
0: जी? सत्यम जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ सर जी। अब बारिश हो रही थी तो अभी बंद हो गई है काम। बारिश हो रही थी।
0: जी, आपके वहाँ अभी अच्छे से बारिश शुरू हो गई है?
1: हाँ, बारिश शुरू ज़्यादा खास नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो कछु खेती के लाभ मिल जाएगा, क्योंकि धान आने की रुपाई चल रही है खेतों में। तो
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सुनवा दीजिए सर जी। गाने बोला है, रक्षाबंधन सावन आने वाले हैं, तो सावन ऊपर एक गाना है, सुना है मैंने, तो चांदनी गाने वाले लगी या सावन को, फिर वो जड़ी है। और
0: जी ठीक है सत्यम जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो म्यूजिक नंबर, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, बताइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ का मौसम साफ है और सावन आने से पहले लगातार बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो फिलहाल मौसम साफ है और उम्मीद है कि इधर भी बारिश हो जाए।
0: जी, तो मतलब आपके वहाँ बारिश हुई है लेकिन अभी उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी अमूमन होती है।
1: नहीं, इतनी ज्यादा नहीं हुई क्या? क्योंकि अब जैसे कि अगर इतनी ज्यादा, तो आपको पता होता है जब आप न्यूज सुनते होंगे,
0: जी
1: हिमाचल
0: जी
1: प्रदेश में कई बार लैंडस्लाइड होता है, तो
0: जी
1: ये अभी इस चीज का भी कोई रुझान नहीं है।
0: जी तो बताइए आज आप
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे मन मूवी का गाना सुनना है।
0: जी, और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आप मुझे गाना डेडिकेट रहेगा, तो
0: जी
1: पूरन वर्मा हैं, पूर्णिमा जी हैं, और धर्मवीर जी हैं, सत्य विष्णु कुंड जी हैं, और भगवान सिंह परमार हैं, और महाराष्ट्र तनुश्री हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता है, सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है, तो चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह हेलो म्यूज़िक लवर्स कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये रविवार भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325-40 और 2325-58, और हमारा STD कोड है 031-92। तो चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनते हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में गुलशन बावरा की लिखी रचना। संगीत दिया राजेश रोशन ने। फिल्म है दुनिया मेरी जेब में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार मजरू की लिखी रचना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अब सुनते हैं अनजाने में फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले ने स्वर दिया, गुलशन बावरा के लिखे बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

श्रोताओं, अभी आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो दिन याद करो फिल्म का गीत सुन रहे थे। अब सुनते हैं लव लव लव फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। गीतकार अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी।

श्रोताओं, अभी आप चित्रपट संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। सबसे पहले रोजगार समाचार।

पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF, नोडल अधिकारी FCA एवं MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के दो पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 40,000 रुपये का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री पर्यावरण विज्ञान, मरीन बायोलॉजी, ओशन स्टडीज अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा SS ऑफिस का कार्य सार्थक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की विजिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF

वन सदन हैडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार। अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोता, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाली है। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी।

0: और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की

0: दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने

0: सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. Urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Center to develop over 160 kilometer long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House and Nexi. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of

0: ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन के पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर,

0: अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए ऑपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में उनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए कि ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि
1: जी
0: इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल के कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बातें। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो

0: भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है।
2: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है, जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोश पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई, सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि, आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
4: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि

0: ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी है, उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे। तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नकार दिया, तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं। उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं हुआ और एसआईटी आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं, और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उनपे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब एमपी चोरी करती है, एमएलए चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम भी अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा, और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष।

0: इसकी जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहाँ जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है।
1: जी अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली बात ही जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
3: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12-13 साल में देखे हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसके वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा

0: महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था, तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट द इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए किया, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते हैं 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार, जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे हो वर्ल्ड रैंकिंग? आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो? हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो? मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेकर चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग, जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही? क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं, जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम कर

0: करते हैं, और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं वो उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए है, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Trichy Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades. Aaj ke karyakram mein, Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain. Violin par Srimati Parur M.K. Anant Lakshmi, Mridangam par Shri B. Ganapati Raman, tata Kanjira par श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव भारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंतलक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करगर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी।
1: इंद रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद, सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a tani avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Shrikant on the Kanjira. Shrimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandadu, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मदुरई, दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे है। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य वो आदत है जो हमारी क्षमता, समय और अवसर तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टालता है, वो सफलता से स्वयं को दूर कर लेता है। इसके विपरीत परिश्रम, अनुशासन और समय का सदुपयोग हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है। आलस्य को त्याग कर समय का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।